0: patience and duty. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647 504 1518

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ डोगरे दी धी नेहा तुंदे सारे आस्ते लेई आई आ डोगरे रेडियो ते अस गल करा दे डोगरी लैंग्वेज दी, डोगरी भाषा दी। जियां कि मैं तुसें दसा दी ही कि टाकरी लिपि दा निकली ही, पर जियां कि अज जम्मू दे बिच भी बहुत लोग हन जो अपनी भाषा की नहीं बोलदे, पर मैं मन्नी आ कि जेड़ी डोगरी भाषा है वो साड़ी माँ है, ते हिंदी है वो साड़ी दादी है, ते माऊ थार माँ होनी चाहिए है, ते दादी थारे दादी होनी चाहिए है। पर फिर भी कुछ लोग ने जो बड़े चिकते ने, शर्मांदे ने, ते कई ते वो भी कैटेगरी है लोके दी जो आखे दे अगर डोगरी बोल के ते ग्राही सही हो गए। ठीक है, मैं समझनी हर भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है, एक पर्सनल डेवलपमेंट आस्ते हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर अपनी जड़ें ही भुलाना केड़ी समझदारी है। अपनी जड़ें दा, अपनी पुरानी जड़ी अस जित्थों आए ने, जो साड़ी ओरिजिनल भाषा है वह भुलाना भी कोई समझदारी तो नहीं है, वो भी असी ज्ञान होना चाहिए उसका भी, तो असं अपने बच्चों की भी वो सिखानी चाहिए है। तो सुनो अगला गीत, तो मैं करनी हाँ फिर अगली बार वो बाद।

मैं तो मैं स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं आज ते आज ही तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। ते मैं जिया तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग ना जिन्हें कि टाकरी दा ज्ञान गे नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जिया कि साड़ी भाषा विलुप्त होआ करदी है। ते अजकल सधारण तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। ते ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, उह संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हन जो सिमिलर हन संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम हो जांदा हुंदा या फिर वो फोनेटिक थोड़ा जिहा चेंज होई जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुसीं लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुसीं चुको हसा, ते ये डोगरी च होई जांदा है आसा। ते डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जांदी है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जांदी है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उहां गए हिमाचल प्रदेश च भी बोली जांदी है। डोगरी भाषा ते हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल दे आए भी कई जगह न जिहदे च प्योर डोगरी बोली जांदी है। ते डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जी जम्मू प्रदेश च बोली जांदी है, इहदे कन्ने होर भी बड़ी पहाड़ी भाषा जो बोली जांदियां। तो सुनो अगला गीत, ते फिर मैं सुनानी हां तुसें बाकी भाषाएं दे बारे।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे डोगरी भाषा दी। ते जियां कि संस्कृत बेस होंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गै डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च और भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे वो जेड़ी भी उन्दी अपनी मातृभाषा है, जो भी उन्दी जड़ां ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उन्दे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें की नहीं भुले, तो उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद ही इजाजत, मैं फिर परती आगे जाते एक नवी कहानी लिए, एक नवा ज्ञान लिए मेरे डुग्गर प्रदेश का।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स, हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बर्न रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दही मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
7: GTA ਦੀ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ।
8: ਅਲਫਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ AZ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
7: ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਲੱਖੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 905-799-1525 9057991525।

चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी नहीं, टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सुन रहे हो और आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं www.am530.ca या रेडियो वास्ट टोरंटो.com देते दुनिया के किसी भी कोने जाके तुसी इंटरनेट की मदद नाल सानू सुन सकते हो। अपने जो सैलफोन च नंबर सेव है मेरा 416-518-3200 416-518-3200 ते तुसी साडे नाल गलबात कर सकते हो। और प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा उस परमपरक परमेश्वर के नाम ओट आसरा जिसके नाम ओट आसरा आगाज दुनिया की हर शायद उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभव निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चिर का पाठ रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे।

0: हंड्रेड माइनस टेन मल्टीप्लाई फाइव माइनस ट्वेंटी।
1: आवाज निकली सुन रहे जी।
2: संतोष उच्ची बोलना पड़ा जिम्मे सचा जी की आवाज आ रही है ना, उन्हें होनी चाहिए थोड़ी।
0: हंड्रेड माइनस टेन मल्टीप्लाई फाइव माइनस ट्वेंटी।
2: मेरे तक आई नहीं तक।
1: नहीं जी आंदियां बट बहुत घट आंदियां क्योंकि जब तू कैलकुलेटर आ गया चीजा क्योंकि होर बहुत चीजा नवी आ गई।
2: पर पाजी फिर साडी बस क्यों कराई पई सी ने ए प्लस बी करके। मेरी जिंदगी नरक सी पाजी, मैं मैच चल पैना सी। मैनूं ए नहीं समझ आया तीन चार साल भी ए बी ना जमा किवें होजू। एक ते दो ते जमा हो जाणगे, ए और बी किवें। ओह कहणगे सपोज करो, मैं कहा सपोज की करां। जे मैं सपोज मन च करता जीरो प्लस जीरो फिर आंसर तो जीरो आऊगा।
1: हाँ जी
2: उत्थे आंसर तेती आ जा करे। हाथ खड़े करी कह संतोष वर्गिया कुड़ियां मूहरे मूहरे सर सर सर असी थले गर्दन बिच नूं बड़ जाया, ताही गर्दन बिच जेनूं रहेगी मेरी वेदे लो।
1: बेसिकली जिहड़े उत्थों दी एजुकेशन है तुहाडा जिहड़ा ओवरऑल थोड़ी जिदा तुसी समाज विचरना हैगा उहदे वास्ते हरेक चीज थोड़ी थोड़ी थोड़ी पाई जांदी है। फिर उस चीज तुसी इंटरेस्ट आ जांदा, परफेक्ट हो जांदा। फिर उस चीज अगे तुसी चक के उहदे विचों तुहाडा पैशन बनना शुरू हो जांदा। बट जे तुसी कोई टच ही नहीं करोगे चीज, फिर तुहानूं कई वार तुहाडे अंदर भी चीज हुंदी लुकी रह जांदी हुंदी है। इहो
2: जगजीत सच्चा ने पंजाब टैक्स सोल्यूशन तों ते स्टार्टिंग कीती सी इहनां ने मिसेस सागा तों। कैम्ब्रिज दे विच उन्ने ही बंदे इधर। जगजीत सच्चा उन्होंने खासियत यह है कि तुहाडा अकाउंटेंट साल च एक बार दर्शन दिंदा तुहानूं, 1200-1400 दी इनवॉइस बणाउंदा ते जिहड़े नाल दा स्टाफ आ पेपर तैयार करदा ते बाय बाय टाटा। जगजीत सच्चा जी नूं तुसीं कदे भी किसी भी कॉम्प्लीकेशन के तौर के उत्ते कोई ऑडिट आ गया हैगा, टैक्स दे विच कोई रिबेट्स ने, तुसीं पिछले टैक्स एप्रीसीएशन दे भरे हुए ने, कैपीटल गेन पे किया, हुण तुसीं उह कैपीटल गेन दे पे किए हुए टैक्स नूं अपनी हुण दी रिटर्न यूज करना चाहते हो, ये सब का असीं स्पैशलाइज करते हैं। किदां ग्रोसरी के उपर टैक्स जिहड़ा रिबेट आया वो तो लैके हर चीज़ इन्हां दे जिन्ना भी क्लाइंट नूं दस्या जांदा ते उहदा बेनीफिट लैंदा। जी जी जी कुछ मैसेज दोंगे अच्छा।
1: हाँ जी अद्धा बहुत वड्डा मैसेज है जी, जिहड़ा अपने ऑडिट की गल की है ना, अपने ट्रकिंग फील्ड दे विच ओनर ऑपरेटर ड्राइवर सीआरए वालों बहुत ज्यादा टारगेटेड है। हरेक नूं मोस्टली लोगों नूं चिट्ठियां आ रही कि तुसीं पीएसबी दे अंडर आ रहे हो, बहुत सीरियस बहुत वड्डा इशू आ। कई लोग 80-90 हज़ार दी चिट्ठियां लई बैठा, उन्हां नूं पता नहीं लगता की करना। जे थानूं भी कोई इदां दी चीज आउंदी आ, तुहाडा केस किसी दा रिप्रजेंटेशन करना सीआरए दे विच, क्योंकि रिप्रजेंटेशन ही थानूं बचाउंदी है उत्थे कि असी बिजनेस कर रहे हैं, असी कोई जॉब नहीं कर रहे, तो सानू सारी चीज साडे कोल लैके आओ ते असी बहुत अग्रेसिवली होके ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਆਰਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਡੇਲੀ ਅੱਜ 3 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 416-720-3642। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਰਿਬੇਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ HST ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, 1,30,000 ਤੱਕ ਦੀ HST ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲਿਆ, GST ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ $50,000 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, 416-720-3642।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ। 416-720-3642 416-720-3642 416-720-3642 ਕਿਚਨਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਟਲੂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ GTA ਇੰਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 416-720 3642. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, 416 700

0: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੌਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਲਸਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲਸਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਨ ਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਔਫਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
1: ਜਾਣਕਾਰੀ
0: ਕਬ ਤੱਕ ਐਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਮੇ। एजुकेशन फंडिंग में हम डील करते हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में ही हम डील करते हैं, मतलब आपको फीस पे नहीं करनी, गवर्नमेंट फीस पे करती है इन प्रोग्राम्स की, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, उल्टा आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, बैंक के पैसे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पढ़ते लिखते हुए आपको फंडिंग आपके खाते में देती है। 30,000 to 100,000 की फंडिंग होती है डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज। तो इसमें लाइक कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे पेंशन पे है 75 की है, आप चाहे 40 ईयर्स के हैं, सेक्शन तो लोगों को ज्यादा फायदा है। लाइक अगर आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम $70,000 से कम है, नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 अभी देखा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप हमें कॉल करें, ऑफिस आए, असेसमेंट कराएं, फंडिंग को मिस ना करें। ऑलरेडी आपके सारे आस पड़ोस वाले ले चुके हैं, आप पीछे ना रहें, आप अपना नुकसान ना कराएं। 30,000 to 100,000 की फंडिंग हासिल करें गवर्नमेंट की पॉलिसी एक हफ्ते बाद। इस हफ्ते के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज है, ग्रांट नहीं आएगी, लोन आएगा। फंडिंग के दो पार्ट से ग्रांट और लोन, ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है
0: जी। ते बिल्कुल जी, ग्रांट कहिंदे बंद हो रही है, ते सिर्फ लोन ही मिलना हैगा हुण उस तो बाद। ते एक किन्नी केड़ी डेट दसी तुसी सराश?
1: हाँ जी, तो लाइक 1 अगस्त के बाद जब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का, तो उसमें गवर्नमेंट ने ग्रांट्स बंद कर देनी है। और अब ऐसा भी नहीं आप 1 अगस्त को आएंगे, क्यों? क्योंकि 22 जुलाई को लास्ट बैच है कॉलेज का और 18 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन क्लोज है इस बैच की। तो इसमें आप एनरोल करेंगे तो आपको ग्रांट आएगी। कैसे ग्रांट आएगी? अगर आप मान के चले, पहले तो लाइक फंडिंग का नाम सुनकर हमें लगता है डर कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम भाई वो वाली फंडिंग में डील ही नहीं करते जहाँ पे कागज हिलते हैं, कमीशन ली जाती है। हम बड़े साफ काम साफ तरीके से 8 सालों से कर रहे हैं, बहुतों को हेल्प कर चुके हैं, कोई इसमें हिडन चीज नहीं है। अब इसमें मान के चले फैमिली ऑफ फोर है तो अप टू 80,000 की फंडिंग आती है। आज की डेट में 40,000 ग्रांट है, 40,000 लोन है जो कि 0% पे है, और 1.5 साल बाद 2.5% साल का ब्याज है, ओपन लोन है, मत लीजिए, ऑप्शनल है, ग्रांट ले लीजिए। लेकिन अगर आप हफ्ते बाद एनरोल करेंगे तो 80,000 ही आएगा फैमिली ऑफ फोर को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो, लेकिन सारा लोन होएगा। तो देयर इज नो ना लोन तो हम पे वैसे इतना है, तो आप कब क्या करेंगे एनरोल करके? तो अभी एनरोल करें, अभी एक्शन लें। कोई एज लिमिट नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, डिलीवरी ड्राइवर है, अच्छा बेनिफिट है आपको, आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आते, तो ये नहीं मेरे खाते में आते भाई साहब, कोई कैच नहीं है, टिम होटल में नहीं मिलते, 1000 के फैट प्रॉफिट है, ऑफिस है 7 to 8 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉल कर रहे हैं, ऑफिस आए, असेसमेंट कराएं।
0: जी जी बिल्कुल। और इसमें मैक्सिमम एज कितनी है? क्योंकि ना मेरे को कल भी कॉल आई किसी की, वो कहते मैं करना तो चाहता हूँ कोर्स, कहते पता नहीं अब मेरे को तो लगता है मेरी एज बहुत होगी है तो नहीं मैं इसमें एनरोल हो सकता। तो उनकी एज बता रहे थे वो 66, तो इसमें मैक्सिमम एज कितनी है?
1: कनाडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम नाम की कोई चीज है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के एज के हिसाब से। हमारे क्लाइंट 75 ईयर्स के भी है, ऑफिस आए 300 क्लाइंट हमारे सीनियर सिटीजन है, तो आप आए उनकी फाइलें देखें, सबकी फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। अब आप मान के चले लास्ट वीक 28 बंदों की फंडिंग अप्रूव हुई है जिन्होंने मई बैच में ज्वाइन करा था या जून में ज्वाइन करा था। 30 to 90 डेज में आपके खाते में फंडिंग आती है, हमारे में नहीं आती। और लाइक इसमें ना कुछ हिडन नहीं है, आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है। अब जो सीनियर सिटीजन है वो ताश खेलने जाते हैं, कहते सर ताश खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 घंटे फुली ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, फंडिंग भी आ गई, स्किल भी सीख ली, और क्या चाहिए। मैनेजमेंट के कोर्स करें, 2-3 घंटे ऑनलाइन रहे, फोन पर तुम पूरे दिन लगे रहते हैं, तो पैसे मिल रहे तो और इंटरेस्टिंग लगे रहेंगे नहीं। और बाकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, 75% होनी चाहिए, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट्स है, आसान सी। बाकी हमारा ऑफिस खुला है, कुछ भी दिक्कत हो तो ऑफिस आप आ सकते हैं।
0: अच्छा, जैसे सरांश अब आप कह रहे हो कि ग्रांट अवेलेबल है और लोन भी, ग्रांट प्लस लोन है ना, फिर उसके बाद सिर्फ लोन ही मिलेगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा जो अब इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे और जब वो एनरोल होंगे तो उनको कितना घाटा आप बता सकते हैं?
1: हाँ जी, अगर आप फैमिली ऑफ टू है, मान के चलो यंग कपल या रिटायर्ड कपल है, उनको आज की रेट में 45,000 की फंडिंग मिलती है, जिसमें से $25,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना उन्होंने। अब यही अगर मेरे पास आते हैं एक हफ्ते के बाद, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही, मेरे घर की पॉलिसी तो है नहीं, तो ये नहीं मैं पुश कर रहा हूँ आपको, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट दे रही है तो दे रही है, नहीं दे रही तो नहीं दे रही। आज ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, एक हफ्ते बाद एनरोल करेंगे 45,000 का, 45,000 लोन आएगा। तो इसलिए हम मीठी बातें भी करते हैं कि कोई कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है। आखिरी में आपके खाते में जब फंडिंग आ जाती है तो हमारी छोटी सी चीज है, $199 या $499, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग, वन टाइम फीस छोटी सी क्यों है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, कुछ कोर्स इजी है, कुछ बहुत इजी जिसमें टीचर ही नहीं है वो बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे आप, उसमें खुद ये सेल्फ स्टडी मॉडल होता है, तो इसलिए छोटी सी फीस है 199, 499, शुरू में कुछ नहीं देना, आपके पास मुझे फंडिंग आती है, जैसे लास्ट वीक 28 बंदों की फंडिंग गिरी है खाते में, तब हमारी छोटी सी फीस आपने देनी है, गवर्नमेंट जब इतना पैसा यूक्रेन मोजाम्बिक्यू हेती को दे रही है बिलियन डॉलर आप पे लगा रही है, तो आपको लगता है कुछ हिडन होगा, कुछ हिडन नहीं है, कोई
0: कैश नहीं मिल रही है, मान लो अब मिल रही 45,000 तो इसमें 25,000 तो ग्रांट है, तो बाद में जब ये ग्रांट आप कह रहे हैं बंद हो रही है बस अगस्त से, तो 45,000 ही मिलेगा एज ए लोन के उसमें 20,000 रह जाएगा,
1: 45,000 नहीं लोन ग्रांट बंद हो जाएगी,
0: अच्छा ठीक है, मिलेगा इतना ही पर वो सारा लोन होगा,
1: बिल्कुल जी, अब पांच आम आपको मिल रहे हैं तो दो आपके हैं, तीन लोन के हैं, अब बाकी पूरे के पांच पांच आम ही लोन के हैं, एक हफ्ते के बाद एनरोल करेंगे तो फायदा नहीं है आपको इतना, आज की डेट में खासकर जो रिटायर्ड कपल है, यंग कपल है जिनमें किड्स नहीं है उनको अभी एनरोल करना चाहिए किसी भी हालत में, और बाकी जो फैमिली विद किड्स है, तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उनको तो थ्री किड्स वालों को जिनके तीन बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं वो भी डिपेंडेंट ही काउंट होते हैं आज की डेट में, जो मैं बात कर रहा हूँ एक हफ्ते तक वैलिड है, वन वीक तक वैलिड आई बातें, तो फैमिली ऑफ फाइव को 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 ग्रांट है, 50,000 लोन है, लोन ऑप्शनल है, ग्रांट ही ले लीजिए क्योंकि टैक्स फ्री है, नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करना होता, ग्रांट का मीनिंग होता है वापस नहीं करना आपने ये, है ना, तो आपकी इनकम अगर कम है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हैं, तो गवर्नमेंट आप पे आज इन्वेस्ट कर रही है, एक हफ्ते बाद पॉलिसी चेंज हो रही है, पीछे ना रहे, कॉल करें ऑफिस है, नंबर नोट करें आप हमारा 437-234-71, 437-234-71 उन्हें तुसी कॉल कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो, एस्टीमेट ले सकते हो 437-234-71 437-264-3175 तुसी कॉल करो, ऑफिस आओ 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हर एंटर डेरी पे, पहले कॉल करें क्विक असेसमेंट करा लें, आपको बेनिफिट हम बता देंगे कितना हो रहा है, कितनी ग्रांट बन रही, कितनी लोन बन रहा है, देन ऑफिस आए क्विकली एनरोल करें 437-234-71 437-234-71 437-264-3175
0: जी सरांश, थैंक यू वेरी मच, ते मैं भी एक बार नंबर दे देनी हूं, तुसी नंबर नोट कर लो, ते सरांश नूं तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर हैगा 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਲੱਸ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਲੋਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: जी सत श्री अकाल कैसी हैं बहन जी आप
0: जी जी सर बहुत अच्छे हैं आप सुनाएं
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंडे मॉर्निंग प्रोग्राम से आगाज आपका बड़ा बढ़िया प्रोग्राम वो आप बता रही थी वो अपने टोरंटो में जो फेस्टिवल में अटैक हुआ वगैरह सेंट क्लियर पे अब इसमें देखिए लोग जो है पुलिस बहुत सख्ती कर देगी क्योंकि जहां पे भी गैदरिंग हो रही वहां बैरिकेड ज्यादा अच्छे लगाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं किसके जो भी वहां बंदे आते हैं वो कौन से लोग हैं किस गैंग से ताल्लुक है क्या है नहीं पता वो उनके दुश्मनों को पता चलता ये बंदा फुला वक्त पे यहाँ है वो आके अचानक अटैक करते हैं उसमें पब्लिक का क्या ताल्लुक है भाई आप और हम तो ऐसे ही चले गए एंजॉय करने के लिए जैसा आप बताए म्यूजिक का आनंद ले रहे थे वहां आनंद लेने गए तो ये आनंद फानन काम कर दिए आपका तो ऐसा तो नहीं होता ना अभी देखिए पिछले साल ही आपकी लिपो लिपो करके फिलिपिन डे होता है बड़ा मशहूर है वो मॉन्ट्रियल में मैं तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ वो तो वो उसमें भी देखिए बंदा गाड़ी लाके चढ़ा दिया सब पे तो ये सोचना चाहिए अच्छा फिर दूसरी बात जितने भी ये टोरंटो में बाइक लेन्स है जहां पे भी बाइक लेन्स है इनको हटाना चाहिए उसकी वजह ये है बाइक के बहाने क्या हो रहा है आपकी रोड जो है वो नैरो हो जाती छोटी हो जाती अब वो जहां से दो गड्डियां या तीन गड्डियां जाना है वहां से अब एक ही गड्डी जा रही है एक तरफ बाइक लेन है दूसरी तरफ बीच में एक पार्किंग बनाती है एक अजीब पागलपन दिखता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये और ये जो भी शुरू करा ये पहले रेफरेंडम या मैंडेट नहीं लिया लोगों से नहीं पूछा कि भाई मैं ये करूं या नहीं करूं रेडियो पे टीवी पे होता ना आप किसी से पूछ के कोई निर्णय लीजिए ऐसा आप उठा के अपनी चीजें फोड़ देते। टोरंटो में देख लीजिए, वो पायलट प्रोग्राम शुरू कर दिए, एक पागलपन दिखता, वो बोलते कि टैक्सी जा सकती है और नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती। तो ये बंदे इनसे पूछिए कि जितने दुनिया में उबर चला रहे हैं, सबके ऊपर क्या रंग होता है कलर टैक्सी का? नहीं जी, वो तो नॉर्मल गाड़ी दिखती। तो फिर आप ये कैसा उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस गाड़ी को टिकट दूं या नहीं दूं? वो टैक्सी उबर एक ही बात है। तो कहने का मकसद क्या है, ये फेस्टिवल्स वगैरह के ऊपर बड़ी सख्ती होंगी जहां पे पब्लिक ज्यादा होगी। आजकल परमिशन भी देने का लोग सोच रहे हैं। अब ये देखिए, अभी टोरंटो में एलजीबीटी का निकला था, उसके लिए भी बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन वो समझिए आराम से सारी चीजें हो गए और उसमें सुरक्षा भी थी, सब कुछ थी। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीजों पर तवज्जो दीजिए, वरना आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल होने वाला है कि आप अपने कहीं जा नहीं सकते, कोई गैदरिंग नहीं होगी कोई फेस्टिवल की वगैरह। तो बड़ी दुख की बात है और वो बंदे पकड़े जाएंगे, कहीं भी बच के जाने सकते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बचपन से सुन रहे हैं हम। और आखिरी में सारी बातों पे यही कहूंगा कि गर्मी शौक भी है, गर्मी मौसम भी है, गर्मी शौक भी है, गर्मी मौसम भी है, और फिर इस पे मेरा सोजे जिगर क्या कहना।
0: क्या बात है, थैंक यू सर।
2: शुक्रिया जी, सत श्री अकाल जी, सारों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल बीबी।
0: सत श्री अकाल जी, बिल्कुल, थैंक यू। ते बड़ा वधिया जी, इन्हां दा मैसेज भी आपां कह सकदे आं, भी देख लो किद्दां दा सारा जिहड़ा हालात है वह चल रहा है। तो सी एन टावर दियां जिहड़ियां लाइट्स आ वह भी डिम कीतियां गईयां ट्रिब्यूट दे लई, जिहड़ी इह डेडली शूटिंग हुई है टोरंटो स्ट्रीट फैसटिवल ते। सो वैसे तो उही है कि देखो जिहड़े भी कोई भी फंक्शन किते करवाउंदा है ना, ते किन्ना मेहनत लगती, किन्ना समा लगता, ते फिर ऐदां दे लोग आके रंग दे विच भंग पा देंदे आ। ते जेड़े हुण उत्थे देखो इंजॉय करन आए सी, उहनां दे विचों ही मौत होई ना, जिन्हां दी होई आ। ते उहनां नूं की पता सीगा वी असीं तां जाणा फंक्शन वास्ते, ते उत्थे साडी जान ही चली जाणी आ। सो पुलिस कहिंदे उत्थे इन्नी तादाद दे विच फिर होगी जिहदा अंत हिसाब नहीं। सो देखो पुलिस वालिया नूं भी किन्ना औखा हो जांदा, तां ही तां कहिंदे आ कि इत्थे जिहड़े नियम है ना, स्ट्रिक्टनैस उहनां च बहुत आउणी चाहीदी है। किन्ना कुछ करदे आ उह किसे भी इनवैसटीगेशन दे लई या फड़न वास्ते, कई बार उहनां नूं फिर बेल ते जदों छड्ड दिंदे आ, उह ही है पिछे जिहा जिवें मैं पहलां वी गल कीती आ कि फिर पुलिस वालिआं दा ही मगर पै जांदे आ। पिछे देखो फिर तीन चार जिहड़े पुलिस वाले साडे पुलिस ऑफिसरस, उहनां दी जान चली गई है ना वख वख घटनावां दे विच। सो जे हुण स्ट्रिक्ट कानून के हाँ बंदे ने गलती कीती, फड़िया उहनूं, उह तों बाद सज़ा इन्नी सख्त होवे, ते बाकी कोई कुछ भी ना करे, फिर सारे डरदे रहन। हुण जिहदा जिहनूं दिल करदा है ना, ते आ इत्थे चिंगूजी पार्क च जदों होणा सीगा उदों देखो की होया सीगा, उदों उह पटाके बंब उह गड्डी ते चलाउंदे फिरदे सी, सारे डर गए वी की हो गया, उह वी रंग दे विच भंग पिया। सो पता नहीं क्यों जिहड़े इदां दीआं हरकतां जिहड़ीआं करदे आ लोक, ते कौण इहनां दे पिछे हैगा जिहड़ा की करवा रिहा, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵੈਸੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ अपने व्हाट्सएप ग्रुप से गुणतास ने पाया जी ये सो हेट क्राइम जिहड़े अगेंस्ट साउथ एशियन कम्यूनिटी ब्रैम्पटन दे विच कहिंदे इह पहलां नालों ज़्यादा वध गए मसले ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 2020

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: save onenergy.ca/eap

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets dipal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services dipal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
5: mitran de junction te
6: ho kede junction te
7: ikka junction brampton te
5: raat lagiyan mehfilan are
7: bhai mehfilan te roz hi lagdiyan ne ikka junction brampton te ikka junction brampton te aao taaza swadla khao te 100% di capacity wale shandar banquet hall vich apniyan khushiyan de jashn manao ikka junction brampton karde ne catering big or small with live food truck 11 a.m. to 6 p.m. all drinks 50% off ikka junction brampton te call karo 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
8: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
9: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500
10: आज खुश नबात हो गया
11: था। ओ ता होना ही है, जो तो टिलों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे कहीं नगता बन दाई है।
10: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
11: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
12: क्यों कह रहे हो यहां पर?
11: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
13: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
11: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
14: एक लाइफ है जिसे लव है,
15: ये कहते मुझसे सब है,
16: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्लैग फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्लैग फूड फेर नंबर लै गया आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्लैग फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्लैग फूड
3: कनेडा विच 75 प्लस लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डीपू लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो 50 प्लस टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा
4: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो
3: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज शाही पनीर फ्राइज मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepot.ca ते ऑर्डर करो
4: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते franchisee@pizzadepot.ca ते आज ही अप्लाई करो pizzadepot स्वाद के साथ टॉपिंग्स नॉनस्टॉप

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रामटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਡੀ ਨੇ
1: ਲਿਆ
0: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
0: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ
1: ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਆਪਨੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਈ ਆਪਨੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਲ ਗੁੱਡ
0: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ
1: ਉਲਟਾ ਆਪਕੋ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਕੋ ਜੈਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 5 ਮੇਂ 100,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ 50,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ 50,000 ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੋਨ 0% ਪੇ ਜੌਬ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆਪਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ
0: ਹਾਂ
1: ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਜੋ ਲੋਨ ਹੈ ਆਪ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੋਨ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ
0: अच्छा
1: दो साल तीन साल बताओ
0: अच्छा।
1: आपने लोन डेफर कराया है बैंकों से कभी कभी नहीं,
0: नहीं
1: करते बैंक
0: नहीं
1: वाले गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है आपको असली कागज लग रहे हैं
0: 3 साल तुसी नहीं देना
1: अगर जॉब नहीं लगी कहां से देंगे
0: तुसी कह सकते हो उन्होंने
1: गवर्नमेंट आपकी मजबूरी समझती है बैंक नहीं जो घर उठा के ले जाएगा आपका तो इसलिए हम तो किसी और टेढ़ी मेढ़ी फंडिंग में डील ही नहीं करते जिनमें नंबर चलते हैं सारा साफ काम है साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं बाल सफेद हो गए करते हुए आज शुरू नहीं करा प्रॉपर ऑफिस है कैफे में नहीं मिलते 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है 7 से 8 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए ऑफिस आए कॉल करें असेसमेंट कराएं फीस हमारी आपकी कमीशन कुछ नहीं है भाई साहब कोई सेटिंग नहीं है कोई अप्रोच ही नहीं है तो मेरी कोई आगे सेटिंग ही नहीं है बैंक में
0: पैसे थोड़ा लेना नहीं कुछ
1: गवर्नमेंट की फंडिंग है
0: थोड़ा तो कोई है ही नहीं
1: हम तो कुछ हमारे पास क्लाइंट आते हैं जरूर कहते हैं सर उसने 2500 पहले लिया उस एजेंट ने 3500 पहले लिया
0: छोटा कोई नहीं मतलब
1: जब हमें सुनते रेट पर राइट रेट जाते हैं
0: हाँ जी 200 तो 200 ही लेना 199
1: या 499 दो फीस है डिपेंडिंग ऑन कोर्स कोई एक कोर्स आसान है एक कोर्स बहुत आसान है
0: वो तुम जो भी चूज
1: करोगे आप
0: एडमिशन मिलती
1: है काम होने के बाद
0: हाँ आने बाद जो नहीं है तो नहीं देना एक डॉलर ना दे
1: छूट ऐसा हमें पता आएगा इसलिए हम पैसे लेते ही नहीं पहले
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सो नंबर 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ

0: चक्कर लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट्स दे हरेक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने। 10x10 feet तो लेके 40x100 feet दे तंबू ने। टेबल्स ते कुर्सियां भी नाल लेके आउंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नु बैंक्वेट हॉल वांगू बणाउंदे ने। फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन, LED ग्लो इन द डार्क बनी बनाईया बार्स, टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसी रेंट कर सकदे हो। अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नु कॉल करो 647-999-2569, 647-999-2569।
5: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडी टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नू 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381, 416-457-3381, जां तजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551, 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530

0: Canada day study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file, gal ki, immigration di har problem da solution lain lai, community de jaane pehchane ate tajrabe kar immigration consultant Gary Virk nu milo.
1: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज